अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: श्री राम लला भगवान की
1: जय।
0: श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय।
0: जय।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत के सभी जीव देव अथवा आसुरी स्वभाव के होते हैं। श्री भगवान दोनों के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि असुर स्वभाव वाले जन्मों तक मुझे नहीं समझ पाते, वह अंततः अधम योनि को प्राप्त होते हैं।

श्री गोविंद काम क्रोध व लोभ को नरक के तीन द्वारों की संज्ञा देते हैं। वह कहते हैं कि काम के प्रभाव में शास्त्र विधि का त्याग करने वालों की गति असंभव है। अतः हे मानव, इन तम द्वारों से मुक्त होकर शास्त्रानुसार कर्मों में

मैं ही, मेरा जन्मस्थल मध्य प्रदेश में सिहावा पहाड़, छत्तीसगढ़ का इलाका, मेरे बालपन की क्रीड़ा भूमि, वहां से आई हूँ। चमचमाती उछलती पहुंची विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र की ओर, फिर मालभूमि पार कर समतल प्रदेश की तरफ। छत्तीसगढ़ की लाडली कन्या हूँ मैं। यहाँ की नन्ही बालाओं के साथ चलते हुए चपल गति में छंद सीखा, तुतला कर बोलना, अधेर किसानों से सुना स्नेह संबोधन, साथ लेकर बह चली आगे की ओर। उड़ीसा बना यौवन की रंग भूमि, वहाँ मधुर प्रकृति के मनोहर गोद में नाची हूँ, गीत गाया है अपने प्रियतम सागर से मिल जाने तक।

0: महानदी, महानदी। चित्रोत्पला, महानदी
1: मेरा परिचय खोज रहे हैं। महानदी का परिचय? अरे मैं ही तो महानदी हूँ।

सिहावा पर्वत शिखर से पारादीप के पास संगम तट की दूरी है 851 किलोमीटर। इसमें से महानदी 357 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 494 किलोमीटर उड़ीसा में बहती है। कहते हैं सिहा में कभी श्रृंग ऋषि का पुराण प्रसिद्ध आश्रम था। आज भी सिहावा के पास की पहाड़ियों को यहाँ के लोग गर्ग, कुंभज और मुचकुंद आदि पुराण युग के विशिष्ट ऋषियों के नामों से ही जानते हैं। सिहावा गांव के छोटे छोटे खपरेल के घर, उनको छूकर बहती हुई महानदी की जीर्ण छीर्ण धारा, केनवास पर किसी निपुण चित्रकार के हाथ से खिंचे चित्र की तरह दिख जाते हैं। यहां का शीतल मंद पवन मानो बहाए ले जा रहा है अतीत, बहुत दूर की बात, रामायण की कथा।

0: बाद महाराजा के राज्य में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ा। राजा का आदेश पाकर जरतावेश्या श्रृंगी ऋषि को अपने रूप और सौंदर्य से वशीभूत कर वहां ले आई। फलस्वरूप राज्य भर में वृष्टिपात हुआ और साथ ही दुर्भिक्ष दूर हो गया।
1: अर्जुन उन्हीं ब्रह्मचारी श्रृंगी के तप बल से छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी का उद्भव हुआ। महानदी की धारा पर्वत तट के गणेश घाट से ही दिखाई देने लगती है। ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। गोविंदपुर गांव के निकट से निकली

0: सोनामुखी धारा के साथ मिलकर ये महानदी नाम धारण करती आगे बढ़ती है और इसी के साथ साथ बहती चलती है सीता नदी। सिहावार महानदी की महिमा के बारे में यहाँ के पुजारी श्री मुरली गिरधर कहते हैं,
1: तो यहाँ सिहावा गांव में बहुत से बहुत स्थान पाए गए हैं। उर्वा की ओर में नजदीक में शीतला मानी हुई देवी पाए गए हैं और उसी पहाड़ में माता शांता की गुफा वहाँ भी पाए गए हैं और इसी पहाड़ में दुर्गा महाकाली दुर्गे की स्थान गुफा यहाँ भी पाए गए हैं। यहाँ गांव वाले भाइयों की रोजगारी केवल खेती बाड़ी इदो सिवाय और कोई गुंजाइश नहीं
2: है। कभी सुना है आपने छत्तीसगढ़ के सरल निष्कपट किसान विमल स्वरों में कैसे मेरा गुणगान करते हैं? सफेद चांदी जब मेरी देह पर चांदी की चादर उड़ा देती है तब उनका सम्मिलित स्वर मेरे किनारे के पहाड़ शिला वृक्षादि सबको मुग्ध कर देते हैं। मैं रुक रुक कर सुनती हूँ।

0: महानदी तट पर अवस्थित राजिम इलाके का पुराणों और इतिहास में बहुत महत्व है। यहाँ पर महानदी में उसकी सहायक नदियाँ टैरी और सोंढूर आ मिलती हैं और इस मिलन स्थली पर प्राचीन शिव मंदिर कुलेश्वर अवस्थित है। 9वीं शताब्दी में राजा विलासतुंग ने इसका निर्माण किया था। राजिम का महत्व बताते हुए लेखक पुरुषोत्तम अनासक्त बताते हैं,
1: महानदी छत्तीसगढ़ की गंगा है और राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। महानदी ने छत्तीसगढ़ को उपजाऊ धरती दी है और धान की खेती इस इलाके की सबसे बड़ी विशेषता है। लोग इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म से छत्तीसगढ़ का संबंध रहा है। ऐसा कहा जाता है कि महानदी के रेत में सोना मिला करता था। सही बात तो यह है कि सोंढूर का नाम ही छत्तीसगढ़ के लोगों ने रखा है, सोना जिसमें ढुलता हो, सोना जिसमें से आता हो। और पहले लोग यहाँ से सोना निकाल लिया करते थे। राजिम एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। राजिम में भगवान श्री राजीव लोचन का विख्यात मंदिर है और इसमें आदमकद प्रतिमा है भगवान विष्णु की। वह विष्णु की प्रतिमा यज्ञ पुरुष के रूप में स्थापित है। राजिम वैष्णव तीर्थ भी है, राजिम शैव तीर्थ भी है और राजिम जो है वो जैनियों का भी तीर्थ रहा है, क्योंकि उसके भी कुछ चिन्ह यहाँ मिलते हैं। गुरु घासीदास जी इसी इलाके के हैं। इसके अलावे और कुछ ऐसे व्यक्ति भी जन्म लिए जिनके विषय में इतिहास तो मौन है, लेकिन दंत कथाएँ प्रचलित हैं। एक बहुत ही आदिवासी नायक जो बड़ा प्रसिद्ध रहा है, जिसका नाम है कचना धुरुआ, वो इसी इलाके का था।
0: स्वतंत्रता संग्राम में भी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यहाँ अस्पृश्यता निवारण के लिए कठोर संघर्ष किया। श्री अनासक्त जी कहते हैं,
1: स्वतंत्रता संग्राम में महानदी के तट पर रहने वाले लोग बहुत अधिक सक्रिय रूप से भाग लिए और उसमें धमतरी का स्थान भी महत्वपूर्ण है। धमतरी के पास कंडेर नामक एक गांव है जहां से सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। धमतरी में उस समय छोटे लाल बाबू थे, नत्थू जी जगताप थे, नारायण राव जी मेघावाले थे। ये तमाम लोग स्वतंत्रता संग्राम के महान

महानतम सेनानियों में से हैं। मैं इनका नाम जिनका ले रहा हूँ, और इसी इलाके में पंडित रविशंकर जी शुक्ल ने भी इनके सहयोग से स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र किया था। राजिम में उस समय पंडित सुंदरलाल जी शर्मा थे, जिन्होंने अस्पृश्यता निवारण का कार्य शुरू किया और जिससे गांधी जी भी बहुत अधिक प्रभावित हुए। रामायण और महाभारत भारतवर्ष की ऐसी रचनाएँ हैं और ऐसे महाकाव्य हैं कि हर इलाके में इनका प्रभाव जनजीवन पर पड़ा है। महाभारत का प्रभाव बहुत अधिक इस इलाके पर पड़ा और यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी भाषा में महाभारत को कहना शुरू किया, जिससे पंडवानी का जन्म हुआ।

0: छत्तीसगढ़ के महानदी क्षेत्र में हुए जनजागरण और लोक भाषाओं के विकास के बारे में लेखक नारायण लाल परमार जी का मत है।
1: नहर सत्याग्रह कंडेल में हुआ था, जंगल सत्याग्रह रुद्दे के पास हुआ था। वो नहर सत्याग्रह, नहर का पानी नहीं लेने देती थी सरकार, तो उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू किया। वहाँ उस सिलसिले में भी गांधी जी आए थे यहाँ। तो ये क्षेत्र भी इस लोक कला की दृष्टि से बड़ा धनवान रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में दो ही ऐसे व्यक्तित्व है, एक तो अपने बघेरा के दाऊ रामचंद्र देशमुख, और दूसरे जो आपके हबीब तरवी साहब हैं। अब भट्टरी की कलाकार भी आपको बिलासपुर में मिल जाएगी, सुरेश भाई खांडे। तो इस तरह से हर कला क्षेत्र में यहाँ आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे।
0: महानदी के तट पर एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है सिरपुर। पहले यह शरवपुरी राजाओं के अधीन था। यहाँ पर है प्राचीन गंधेश्वर महादेव का मंदिर। 8वीं शताब्दी के सोमवंशी राजा महाशिव गुप्त द्वारा निर्मित बौद्ध विहार यहाँ की महत्वपूर्ण प्राचीन कीर्ति है। रायपुर से कसडोल होते हुए आने पर गिधौरी में महानदी पार करने पर पड़ता है शबरी नारायण मंदिर। भगवान रामचंद्र की यहाँ पर शबर राजा पूजा करते थे। उनकी स्मृति में देवता का नाम शबरी नारायण या शिवरी नारायण हो गया है।
2: शैशव और किशोरावस्था का क्षण और चंचल दिन बिताकर उन्हें पीछे छोड़ते हुए मैं विकसित होती गई, पल्लवित होती गई। यौवन की ज्वार से विमुक्त फिर उड़ीसा की धरती छूटी हो, यौवन की प्रगल्भता से भरी। यहाँ मैं नायिका हूँ, कभी गुमान भरी तो कभी प्रगल्भा। भारत में इतनी नदियां हैं, किसी को तो महानदी कहकर पुकारा नहीं जाता। मुझे ही यह गौरव मिला है। हाँ, एक नाम और है मेरा, चित्रोत्पला।

मेरी यात्रा भूमि उड़ीसा में जगन्नाथ पधारे। कहा जाता है कि आज के इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण सदियों पहले हुआ था।

संबलपुर, सोनपुर और बिनिका के ऊपर शैया पर लौट कर मैं आवेश और रोमांच में सिहर उठी। मुझे लगा प्रियतम मिलन का पथ यही है। धान का भंडार भरा है इस धरती पर। मेरी गति चंचल हो उठी।

0: महानदी के तटवर्ती संबलपुर, सोनपुर, बिनिका आदि इलाके ऐतिहासिक और पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर चितरंजन मिश्र बताते हैं,
1: महानदी कूलरे अवस्थित थिबा दर्शनीय स्थान मानक मध्यरु हुमार बक्र मंदिर होचे एक सर्वश्रेष्ठ दर्शन।
0: महानदी के किनारे अवस्थित हुमा का बक्र मंदिर एक विशिष्ट दर्शनीय स्थान है। ये बक्र मंदिर
1: निर्माण
0: बक्र शैली में तैयार किया गया था या बाद में किसी कारण यह बक्र रूप हो गया था, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह ये दर्शकों के लिए कौतूहल की सृष्टि करता है। ये मंदिर महानदी के किनारे स्थित 8 शिव मंदिरों में अन्यतम है।
1: विश्वनाथ संबलपुर जिपरी मानेश्वर सेपरी हुमार ए बिमलेश्वर मंदिर टी ऐतिहासिक दृष्टिकोण रो एवं धार्मिक दृष्टिकोण रो मध्य सुप्रसिद्ध।
0: महानदी के इन इलाकों में अनेक कलाकार, चिंतक, मनीषी, साहित्यकारों का आविर्भाव हुआ है। बौद्ध दर्शन की शाखाएं जैसे वज्रयान और तंत्रयान का विकास यहाँ हुआ था। संत कवि भीम भोई ने इसी के तटवर्ती छोटे से गांव खलियापल्ली को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ने महानदी तटवर्ती अरण्य सुषमा को काव्य भाषा देकर जीवंत कर डाला। इस क्षेत्र की महिमा व समस्या के बारे में बुद्धिजीवी डॉक्टर श्रद्धाकर सुपकार कहते हैं,
2: महानदी ऊंचे और माँ आप बराबर हमको पालन करे ऐसी महापुरी।
0: पश्चिम उड़ीसा के संबलपुर अंचल की भाषा संस्कृति की एक अलग मिठास है। इस अंचल के अनेक वीर सपूतों ने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महानदी इस अंचल की माँ है, लेकिन प्रदूषण के कारण अब महानदी का जल व्यवहार के योग्य नहीं रह गया है।
2: ऐठाकार पर्व परमाणी नुआखाई पुष्पनी विशेष कर ये जो कृषि संस्कृति ये आमर विशेषत्व।

0: महानदी में प्राचीन काल में नौ वाणिज्य चलता था। अभी से एक बार फिर राष्ट्रीय जलपथ के रूप में परिणत किया जा सकता है। इस विषय पर उड़ीसा विधानसभा के सदस्य श्री पंचानंद मिश्र ने अपना विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किया है।
1: महानदी को आमर पूर्व पुरुष माने ए भारत वर्ष रे चित्रोत्पला गंगा भाव रे नामित करिसेंदे एवं मानि आसिसेंदे।
0: हमारे पूर्वजों ने महानदी को चित्रोत्पला गंगा का नाम दिया था। इस महानदी में उड़ीसा में अभ्यंतरीण नौ वाणिज्य चलता था। वर्तमान में सरकार के वाटरवे कमीशन द्वारा नदियों के जलपथ के विकास के लिए जो योजना बन रही है उसके अनुसार महानदी के लिए

0: भी योजना होनी चाहिए।
1: एटी जो विदेशी पक्षी सब आसंती हिमालयन बर्ड्स संबलपुर पाखरु धमा ठारु प्राय बहुत पर्यंत ए माने लक्षाधिक परिमाण रे एटी ठुलो
0: महानदी के इस अंचल में शीतकाल में बहुत विदेशी पक्षी आते हैं। इसी दृष्टिकोण से इस इलाके में पर्यटन के लिए विकास होना चाहिए।
2: मैं ही यहाँ गिरिराज नंदिनी हूँ। बाघ भालू हो या दंतावल हाथी या कुलांश भरते मृगों का झुंड, सब यहाँ निर्भय होकर विचरण करते हैं। दंतावल हाथी के गंडस्थल से निकलती हुई मदजल मेरे वक्ष स्थल को आप्लावित कर देती है। बिजली की तरह दौड़ते मृगशावक मेरे स्थिर नील जल में छवि निहार कर आश्चर्य से ठिठक जाते हैं। शीतकाल में दूर हिमगिरी से आने वाले अतिथि पक्षी खूब आनंद में किलोल करते विचरते दिख जाते हैं मेरे तट पर।

0: महानदी का यह सात कोसी खाल और इस गहरे विशाल खाल के दोनों ओर शैल राजी का मनोरम दृश्य। सात कोस के घेरे में फैला ये खाल चार चार जिलों कटक, पुरी, फूलवाड़ी और ढेकानाल की सीमा को स्पर्श करता है। सात कोसी खाल के निकट ही तिकरपड़ा एक और अलग स्थल है। दोनों ओर घने वन, नदी तट पर घड़ियालों को पालने, पोषित करने और विवर्धित करने का प्रयास जोरों पर है। सरकारी योजना से इसको एक विशिष्ट अभ्यारण्य के रूप में और गरिमा मिल गई है। वहाँ के वन खंड अधिकारी श्री सुरेश चंद्र मिश्र के अनुसार,
1: सातकोसिया गंड अभ्यारण्य रे आमर विशेष करी अनुगुल वनखंड इलाका रे
0: महानदी के तट पर टिकरपड़ा अभयारण्य 795 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। इस अभयारण्य में दुर्लभ जीव जंतु हैं। महानदी का सातकोसिया खाल इस अभयारण्य के क्षेत्र में है। यहाँ पर एक समय बहुत मगरमच्छ रहते थे। उनके वंश की समाप्ति के बाद 1975 में विश्व खाद्य संगठन की सहायता से भारत सरकार ने एक कुंभीर योजना शुरू की। उसी वर्ष नेपाल से लाए गए अंडों से 250 मगरमच्छ उत्पन्न हुए। इस योजना के फलस्वरूप उड़ीसा में घड़ियालों की संख्या में वृद्धि हुई और इन घड़ियालों के चमड़े से एक लाभदायक व्यवसाय की शुरुआत हो सकती है। महानदी के तट पर तीर्थों की तो माला बनी है। सोनपुर, बांकी, कंटीलो, वैदेश्वर, भट्टारिका, ध्वनेश्वर आदि अनगिनत स्थल, पैरी, सोंढूर, ईव, जीरा, तेल आदि उपनदियों का जल स्रोत अपने हृदय में धारण कर महानदी समुद्र की ओर चलती है। अनगिनत तीर्थों की धूली अपने अंदर समेट कर इटलाती मंद मंद चल रही युग युग से सदियों से।

बाराबाटी दुर्ग के निकट से बहकर गुजरते हुए देख पाती हूँ इतिहास की विजय यात्रा। बाराबाटी दुर्ग ठहरा इतिहास के इस सारे उत्थान पतन से भरे इतिहास का मूक साक्षी।

भारत के पुनर्गठन और विकास पर्व में महानदी ने उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण की है। मध्य प्रदेश में दूधवा, गंगरेल आदि जलाशय बने, उड़ीसा में फिर हीराकुद बांध बनने पर बहुमुखी विकास के द्वार खुल गए।

कटक के निकट विद्याधरपुर में धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना देश में कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एशिया महादेश के चावल के अनुसंधान में गौरवपूर्ण तीर्थ बनकर नया रूप ले रहा है। महानदी पारादीप के पास फॉल्स पॉइंट पर से जाकर सागर में मिलती है। सभ्यता की शिल्प की इतनी प्रगति होने पर भी आदमी के मन में बर्बरता का राज है। वो बदला जा रहा है, वो स्वार्थी बनता जा रहा है, स्वेच्छाचारी बनता जा रहा है। इस शिल्प सभ्यता के तहत प्राकृतिक संपदाओं का ध्वंस करने में लगा है। जंगलों का लोप होता जा रहा है, नदी का नील जल कारखानों की उपस्थिति में दूषित होता जा रहा है, प्रकृति अपना संतुलन खो रही है। महानदी से भला कैसे बचे रह सकती? सभ्यता का अभिशाप उसे भी धारण करना पड़ेगा। विष के जीवाणु इससे जीवन को बचाकर रखना जरूरी है।

0: इस प्रकार
1: मैं बहती चली
0: जा रही है,
1: युगों से चल रही है, चलती ही रहेगी, देखती जाएगी
0: सभ्यता का
1: आगमन,
0: आदमी के आंसू पसीने के संग्राम में
1: महाजीवन के स्रोत
0: की तरह
1: महासागर के साथ
0: मिलकर
1: एकाकार होने के लिए
0: दौड़ रही है।
1: ये
0: महानदी
1: युग युग से
0: सदियों से

0: शिव महिमा, महिमा।
1: प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

0: भगवान महादेव की महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि किस प्रकार कुबेर को भगवान शंकर की कृपा का सनातन पद प्राप्त हुआ और किस तरह भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। आज के कार्यक्रम में हम आपको कामदेव और रति के विवाह का प्रसंग सुनाएंगे। ये कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड में वर्णित है। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात काल चक्र की गति तो बहुत तीव्र हो गई होगी।
2: हाँ परम ज्ञानी शौनक जी, इस संपूर्ण सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। ये कथा रुद्र संहिता के दूसरे खंड में वर्णित है।
1: इस भाग में कौन कौन से प्रसंग हैं?
2: संध्या एवं कामदेव के जन्म के अतिरिक्त कामदेव एवं रति का विवाह और संध्या का अरुंधति के रूप में मुनि वशिष्ठ से विवाह का प्रसंग इसके मुख्य अंग है।
1: मुनिवर सूत जी, इन विवाह प्रसंगों का महत्व क्या है?
2: शौनक जी, ये महाप्रभु की दूरदृष्टि के परिचायक हैं। भावी मानव के जन्म को दृष्टि में रखते हुए इन विवाहों के माध्यम से ही उसके लिए सामाजिक नियमों की नींव रखी गई।
1: अच्छा, फिर तो महामुनि सूत जी इस कथा को विस्तार से बताइए।
2: अवश्य महामुनि शौनक, दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि कर ब्रह्मा अति प्रसन्न हुए तथा स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलसत्य, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जैसे प्रभावशाली मानस पुत्र उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा के हृदय में एक अत्यंत रूपवती नारी उत्पन्न हुई, जिसके रूप लावण्य को देखकर मुनिजनों के मन में भारी जिज्ञासा हुई।

0: अरे ये अत्यंत लावण्यमय नारी कौन है?
1: मुनिवर, आप इन्हें नहीं जानते? ये परम पिता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या है।
0: हाँ देखिए, चमत्कार तो देखिए, दिन में ये क्षीण पड़ जाती हैं और सायंकाल में इनका रंग रूप खिल उठता है,
1: तभी तो ये साय संध्या कहलाती हैं। ये निरंतर किसी मंत्र का जाप करती रहती हैं।

0: अरे ये कैसा प्रकाश पुंज है?
1: हाँ मरीची, और इस पुंज में से एक अद्भुत और दिव्य नर प्रकट हुआ है।
0: प्रजापति दक्ष, इसका ओज सहस्त्र सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रकाशमान है।
1: अरे
0: देखो तो, इसके विशाल स्कंध, बलशाली भुजाएं, वज्र समान कठोर बाहु।
1: मुनि श्रेष्ठ भृगु, मानो संपूर्ण सृष्टि का पुरुषत्व इसकी देह में समा गया हो।
0: हाँ, मत वाले गज जैसी चाल, खिले हुए कमल समान नेत्र,
1: करों में पुष्प धनुष और पांच पुष्प बाण।
0: अरे देखो तो, अब वो पितामह ब्रह्मा के सम्मुख नतमस्तक हो रहा है।
2: हे जन्मदाता, मेरा नमन स्वीकार करें।
3: हजर अमर भव।
2: आज्ञा करें, मेरा जन्म किस निमित्त हुआ है, मैं कौन सा कार्य करूंगा?
3: वत्स, अपने इस मोहक रूप तथा इन पांच पुष्प बाणों से तुम नर नारियों का मन मोहते हुए सृष्टि के सनातन कार्य का संचालन करोगे। तुम्हारा ये कर्म सृष्टि का नियामक होगा।
2: जो आज्ञा दे, कृपया मुझे मेरे नाम से भी अवगत कराएं।
3: ये कार्य मेरे ये पुत्र करेंगे।
4: पुत्रो जी पितामह,
3: इस देवात्मा का नामकरण करो।
4: जैसी आज्ञा दे।
0: जन्म लेते ही तुम हमारे मन को मचने लगे हो, अतः मैं ब्रह्मा पुत्र मरीचि तुम्हारा नाम मन मत रखता हूं।
5: अति उत्तम, तुम में लोगों को मदमत्त बना देने की क्षमता है, अतः मैं दक्ष तुम्हें मदन नाम देता हूं।
0: सुंदर, अति सुंदर।
5: और मदन, तुम बड़े दर्प के साथ उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे, तथा सदर्प होने के कारण तुम्हारा एक नाम कंदर्प भी होगा।
3: अनुज, तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकोगे, तुम्हारे समान सुंदर कोई भी दूसरा नहीं होगा। अतः काम रूप होने के कारण मैं भृगु तुम्हारा नाम काम रखता हूं।
2: इतने नाम? मेरे इतने नाम प्रभु?
3: मेरे मन से तो तुम्हारे एक ही रूप का उदय हुआ है, परंतु तुम्हारे इस रूप ने मेरे मानस पुत्रों के हृदय पर जो अपनी छवि अंकित की है, उसी के अनुसार इन्होंने तुम्हें ये नाम दिए हैं।
2: मैं आप सबके सम्मुख नतमस्तक हूँ।
3: हे कामदेव।
2: आज्ञा पितामह।
3: मेरा आशीर्वाद है कि बल पराक्रम में तुम समस्त देवताओं से भी अधिक प्रभावशाली रहोगे।
2: विधाता, आपकी अनुकंपा मेरे कर्म को बल प्रदान करेगी।
3: तथास्तु। पुत्रो
6: आज्ञा भगवान।
3: कामदेव को सृष्टि के प्रत्येक नर नारी के मध्य सनातन संबंध का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी तो बनना है।
1: हे परमपिता, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी दिव्य पुत्री रति अत्यंत रूपवती है। गुण और धर्माचरण में भी वो कामदेव के सर्वथा उपयुक्त है।
3: दक्षराज, तुम्हारा ये विवाह प्रस्ताव हर प्रकार से उत्तम है। कामदेव।
2: आज्ञा प्रभु।
3: तुम दक्ष पुत्री रति का पत्नी के रूप में वरण करो।
2: जो आज्ञा परमपिता। देवी रति, इस मिलन की रात्रि में हमें अपने अनन्य रूप लावण्य का दर्शन तो कराइए। रति, आपके संकोच ने हमें और भी मोह लिया है। आपकी ये लज्जा सृष्टि की हर नारी का आभूषण बनी रहेगी। आप तो वास्तव में विधाता की अप्रतिम रचना है। आपको अपनी पत्नी के रूप में पाकर आज मैं पूर्ण हुआ।
7: देव
2: रति,
7: आपको पति के रूप में पाकर जीवन भी सार्थक हुआ।
2: रथी, हमारा ये पावन मिलन आज से हर नर नारी की संपूर्णता का द्योतक होगा। नर नारी के हृदयों में पवित्र प्रेम की लौ प्रज्वलित करेगा,
7: और यही प्रेम सृष्टि के सनातन कार्य का उत्प्रेरक बनेगा।
2: देवी, निष्कपट प्रेम मेरा और निष्काम आसक्ति आपका पर्याय होंगे।
7: आप निश्चल प्रेम की अविरल धारा होंगे, और मैं उस धारा को ग्रहण करने वाला पात्र।
2: मैं सुर असुर और मनुष्य की भावी उत्पत्ति का साधन बनूंगा, और आप मेरी अर्थात काम की साधक होंगी।
7: किंतु देव, यदि कोई सुर असुर अथवा मनुष्य इन पवित्र शक्तियों का दुरुपयोग करे तब?
2: तो वो पाप होगा देवी, और उसका दुष्परिणाम उसे भोगना होगा।
7: देव, आपका कथन अत्यंत श्रेयस्कर है।
2: आओ देवी, इस क्षण को भविष्य का बीज तत्व बनाएं।

0: शौनक जी, कामदेव रति विवाह के पश्चात ब्रह्मा जी तथा उनके मानस पुत्र अपने अपने धाम को लौट गए। चहु ओर आनंद का वास था, परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही था। एक बार देवी संध्या के मन में सकाम विचार आ गया।
1: महाभाग सूत जी, उन साध्वी के मन में?
0: हाँ, इस विचार मात्र से वे आत्मग्लानि से भर उठी। पश्चाताप स्वरूप संध्या ने घोर प्रतिज्ञा कर डाली।
2: ये मेरे शरीर में विचित्र सा कंपन क्यों? ये मुझे बार बार उद्विग्न करता कोई अनाम विचार? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इसे संयमित क्यों नहीं कर पा रही? मेरे रोम रोम को सिहराती ये काम भावना, नहीं, ये पाप है। मेरा अपने ही मन पर कोई वश नहीं रहा। मेरा संयम समाप्त कैसे हो गया? नहीं नहीं, मेरा ये शरीर दूषित हो गया है। मुझे इस तन का त्याग कर देना चाहिए। जिस तन पर, जिस मन पर अपना वश नहीं, वो त्याज्य है। मेरा शरीर त्याज्य है। मैं ब्रह्मा पुत्री संध्या प्रतिज्ञा करती हूँ कि काम को मर्यादित करने के लिए कठोर तपस्या करूंगी, ताकि जन्म लेते ही प्राणियों के मन में काम भाव उत्पन्न ना हो। तपस्या पूर्ण होने के पश्चात अग्नि में मैं अपनी देह की आहुति दे दूंगी।
3: देवी, अपने ललाट पर उभरी चिंता की इन रेखाओं का कारण बताएं देवी।
2: हे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी, आवेग में आकर मैंने तपस्या का संकल्प तो ले लिया, परंतु मुने तपस्या के विधान से मैं अनभिज्ञ हूं। हे ब्रह्म शिरोमणि, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे तपोभाव की दीक्षा दीजिए।
3: देवी, जिस उद्देश्य से आप तपस्या कर रही हैं, उसे मात्र भगवान शंभु ही साध सकते हैं, अतः उन्हें अपने हृदय में स्थापित कीजिए। एकाग्रचित से केवल उनका ध्यान कीजिए। वे ही सर्वात्मा हैं, वे ही सर्वस्व हैं। उनके पुण्य प्रताप का स्मरण कीजिए।
2: धन्यवाद महामुने, आपसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर मेरा चित्त शांत हुआ।

0: देवाधिदेव, आपकी तंद्रा भंग क्यों हो गई?
1: ब्रह्मा पुत्री संध्या के जाप से, देवी उमा।
0: संध्या के जाप से? परंतु प्राणेश, वो तो विगत 4 युगों से इस तपस्या में लीन है। आज यकायक आपका ध्यान उसकी ओर कैसे आकृष्ट हो उठा?
1: देवी उमा, हर बात का एक देश काल निर्धारित होता है। अब समय आ गया है कि संध्या को उसके परिश्रम का फल प्राप्त हो।
0: तो विलंब कैसा महादेव? जाइए, संध्या को प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए।
1: जैसी आपकी इच्छा देवी।

मेरे समक्ष अचानक ये प्रकाश पुंज कैसे उत्पन्न हो गया और इसमें से तो स्वयं मेरे आराध्य प्रभु शिव शंकर प्रकट हो रहे हैं। मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई।

0: ब्रह्मापुत्री संदेह, तुम्हारी कठिन तपस्या से हम प्रसन्न हुए। इच्छित वर मांगो संदेह।
1: प्रभु, आप सर्वज्ञाता हैं। मैंने काम को मर्यादित करने के उद्देश्य से ही आपकी आराधना की है।
0: तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जीवन की चार मुख्य अवस्थाएं होंगी, शैशवावस्था, कौमारावस्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था। तीसरी अर्थात यौवनावस्था में ही प्राणियों के हृदय में काम भाव उत्पन्न होंगे। कामोदय की यही निर्धारित मर्यादा होगी।
1: मेरी तपस्या सार्थक हुई भगवान।
0: संदेह, मैं तुम्हें ये वरदान भी देता हूं कि तुम जैसी सती साध्वी तीनों लोकों में और कोई दूसरी ना होगी।
1: मेरे अहोभाग्य देव।
0: मेरा तीसरा वरदान ये है कि एक अति तेजस्वी ब्रह्म ऋषि तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे।
1: पति रूप में? परंतु देवाधिदेव, अपनी प्रतिज्ञा स्वरूप तपस्या सफल होते ही मुझे अग्नि में अपना देह त्याग करना है। यही मेरा अभीष्ट था।
0: संदेह, तुम्हारे अभीष्ट का उत्कर्ष होना तो अभी शेष है। इसी चंद्रभाग पर्वत पर महर्षि मेघातिथि पिछले 12 वर्षों से महायज्ञ कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में अग्निदेव अपने पूर्ण भाव से प्रज्वलित हैं। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का सबसे अच्छा अवसर यही है।
1: परंतु देव, पति
0: पति, मेरे इस वरदान के रहस्य का उद्घाटन भी वही होगा। ब्रह्मा पुत्री, मेघातिथि का यज्ञ अब अपने अंतिम चरण में है, विलंब उचित ना होगा। चलो।
1: जो आज्ञा देव।

0: प्रभु कृपा से ये तीव्र अग्नि ज्वालाएं भी कितनी शीतल प्रतीत हो रही है। उन्हीं की माया से मुझे अग्नि में प्रवेश करते कोई नहीं देख पाया।
1: हे संदे, अब तुम हृदय में उसकी छवि का ध्यान करो जिसे तुम स्वामी रूप में प्राप्त करना चाहती हो।
0: महादेव, मेरे मन में तो उन्हीं तेजस्वी ब्रह्मचारी की छवि है जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी और आपकी आराधना का मार्ग दिखाया था।
1: तथास्तु, उचित समय पर महर्षि वशिष्ठ ही तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। इस समय तुम सूर्य देव का आह्वान करो।
0: जो आज्ञा देवादिदेव।

0: स्वागत है सूर्यदेव।
1: प्रणाम देवाधिदेव, मेरे यहाँ आने का प्रयोजन बताएं।
0: ब्रह्मापुत्री संध्या का भावी स्वरूप आप निर्धारित करेंगे।
1: जो आज्ञा देव। संधे, अग्नि में तपाए तुम्हारे इस शरीर को मैं दो भागों में विभक्त करके अपने इस रथ पर आरूढ़ करता हूँ। आज से संपूर्ण जगत में तुम दो नामों से विख्यात होगी। तुम्हारे शरीर का एक भाग रात्रि और प्रातः का मिलन करवाने वाली प्रातः संध्या कहलाएगा। शेष भाग दिन और रात के मध्य आने वाली साय संध्या के नाम से जाना जाएगा।
2: सूर्यदेव, मेरे इन दो रूपों का कार्य क्या होगा?
1: प्रातः संध्या के मोहक रूप में तुम देवताओं के बीच आनंद और स्फूर्ति का संचार करोगी तथा साय संध्या के रूप में पितरों की प्रसन्नता का कारण बनोगी।
2: जो आज्ञा सूर्यदेव। अरे प्रभु शिव शंकर और सूर्यदेव तो विलुप्त हो गए। देवाधिदेव के अंतिम वरदान का रहस्य। ये क्या, मेरे शरीर का आकार और मेरी आयु क्यों घट रही है? मैं युवावस्था से शैशव में परिवर्तित हो रही हूँ। क्या यही है प्रभु के वरदान का रहस्य?
3: वत्स, यज्ञशाला के लिए समिधा की व्यवस्था हो गई?
4: महामुनि, अरुंधति वही लेने गई है।
3: अच्छा, क्या तुमने उसे भेजा है?
4: नहीं देव, आश्रम के हर कार्य के बारे में उसे पता है। वो तो स्वयं ही।
3: ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो इतनी कर्तव्य परायण और अपने दायित्व के प्रति सचेत है।
4: हाँ देव, आपने उसे शिक्षा भी तो ऐसी ही दी है।
2: अरे अरे अरे ठहर तो सही, अरे कहाँ भागा जा रहा है? ठहर, पहले तो यज्ञशाला में कुलांचे भरता रहा और अब।
4: अरे क्या हुआ पुत्री अरुंधति?
2: देखिए ना मुनि महाराज, पिताजी का ये प्रिय मृग शावक यज्ञशाला को अपवित्र कराया है, अब उनके कुटिया में जा रहा था।
3: पुत्री अरुंधति, क्यों सता रही हो इसे? अरे अरे अरे देखो ना, कैसे डर कर मेरी गोद में छिप रहा है।
2: ओहो पिताजी, इसने तो आपको भी अपवित्र कर डाला है। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व आपको भी पुनः स्नान करना होगा। लाइए लाइए, इस दुष्ट को मुझे दीजिए, इसे मैं अभी स्नान करवा कर लाती हूँ।
3: इसे स्नान? परंतु क्यों पुत्री?
2: पिताश्री, आप ही ने तो सिखाया है कि पवित्र स्थान पर जाने से पूर्व व्यक्ति को स्वयं को शुद्ध करना चाहिए।
3: किंतु ये तो मृग शावक है।
2: तो क्या ये किसी अपवित्र स्थान से नहीं आ सकता? लाइए दीजिए इसे।
3: लो लो, इसे ले जाओ पुत्री।
2: करूं करूं तेरी पिटाई? अरे तुम्हें तो आश्रम के नियम ज्ञात हैं, फिर भी तुम हटो क्या करते रहते हो?
3: हे प्रभु, मैं क्या करूं?
4: क्या हुआ गुरुदेव, आप इतने गंभीर क्यों उठे?
3: प्रिय शिष्य, अरुंधति की ये बढ़ती धर्म परायणता मुझे मुझे चिंतित कर रही है। उसके हृदय में धर्म के लिए जो स्थान है, उसमें सांसारिक जीवों के प्रति प्रेम का कोई अवकाश नहीं। भावना विहीन हृदय सांसारिक दृष्टि से पूर्ण कैसे हो सकता है? कहीं वो निर्दिष्ट सांसारिक कर्मों से विमुख ना हो जाए।
4: गुरुदेव मेघातिथि, अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं?
3: कहो शिष्य।
4: पुत्री अरुंधति का विवाह ही उसे सामाजिक नियमों का पालन करने को प्रेरित कर सकता है।
3: ये विचार तो कई बार मेरे हृदय में भी आया है, परंतु।
4: परंतु क्या मुनिश्रेष्ठ, हमारी अरुंधति तो सर्वगुण संपन्न है।
3: यही तो समस्या है, उससे अधिक गुणी और योग्य पति कहां मिलेगा?
4: महामुनि, जिन खोजा तिन पाइया, खोजने से तो प्रभु भी मिल जाते हैं।
3: उत्तम, अति उत्तम, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब तो मेरी चिंता का निवारण मेरे आराध्य ही करेंगे। अरे त्रिदेव, एक साथ मैं धन्य हुआ।
0: मुनि मेधातिथि, तुमने हृदय से स्मरण किया तो हम उपस्थित हो गए।
3: आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु शिव शंकर।
1: मेधातिथि, हमें तुम्हारी चिंता का कारण क्या है?
0: परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ हर प्रकार से पुत्री अरुंधति के योग्य हैं
3: भगवान,
1: और अरुंधति भी उन्हें पति रूप में पाकर शोभायमान होगी। हाँ।
5: श्रीहरि का ये कथन सत्य है मुनि मेधातिथि, यही काल की नियति तथा अरुंधति के पूर्व जन्म में उसे महादेव से प्राप्त आशीर्वाद भी है।
3: जो आज्ञा त्रिदेव, जो आज्ञा।
6: और महामुनि सूत जी, इस प्रकार वशिष्ठ और अरुंधति का विवाह संपन्न करवाकर महादेव ने देवी संध्या को दिए वरदान को सार्थक कर दिया।
7: महात्मन सूत जी, कामदेव और संध्या की उत्पत्ति से लेकर वशिष्ठ अरुंधति विवाह तक का ये प्रसंग अति रोचक ही नहीं ज्ञानवर्धक भी था। फिर क्या हुआ मुनिश्रेष्ठ?

बधाई कैसी शुभ घड़ी आई। चले शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई, थोड़ी बबूती रमाई थोड़ी भंग चढ़ाई। चले शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई, यह है भोले की सवारी संग भोले के पुजारी।

लक्ष्मण का समझाए के राम बहुले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक की साथी।

0: आत्मशक्ति को राम नाम का भरोसा बार बार देकर पवन सुत ने घोर गर्जना की और हवा में उछल पड़े। उनके चरणों की धमक से वो पहाड़ तुरंत पाताल में धस गया। परम भक्त योगीश्वर पवन तनय योग शक्ति से अपना भार संभालकर निरंतर उड़े चले जा रहे थे। उनके साहस पर रीछकर समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा,
1: हे पर्वतराज, तुम उठकर वायुनंदन को अपना आधार दो।
2: सुंदर प्रस्ताव।

0: आपको प्रणाम है। आपकी प्रेमपूर्ण निमंत्रण का मान रखने के लिए ये लीजिए, मैं अपने हाथ को क्षण भर के लिए टिकाए लेता हूं। किंतु पर्वतराज, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम।
1: हे वज्रांग, तुम्हें धन्य है, प्रभु कृपा से तुम्हें अपने कार्य में निश्चय ही सिद्धि मिलेगी।

0: ये वानर निश्चय ही परम साहसी और वीर है। देखो वायु तरंगों पर कैसे उड़े जा रहे हैं। परंतु जिसके पुत्र ने देवराज इंद्र को जीतकर अपने वश में कर लिया और सारे देवगण जिस दशानन से थरथर कांपते हैं, क्या उसके सम्मुख भी ये ऐसी वीरता दिखा सकेंगे? क्या ये रामदूत बनने के सचमुच योग्य हैं?
1: उचित है कि हम सर्पों की माता सुरसा देवी से इस वानर की परीक्षा लेने के लिए गए।
0: ठीक कहा, आओ चले
1: चले। हे माता, प्रभु का दूत बनकर एक वानर लंका जा रहा है, क्या तुम उसकी शक्ति की परीक्षा ले सकोगी?
2: अवश्य, मैं अभी जाती हूँ। आज सुरन मोहे दीन आहारा।
3: हे यही जननी सुरसा माता, दया करो, राम काज करी फिर मैं आवूं, सीता की सुध प्रभु ही सुनावूं, तब तो बदन पैठियों आई, सत्य कहूं मुझ जान दे माई।
2: नहीं, मैं तुझे यहां से एक डग भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी, तू मेरा आहार है।
3: हे माता, मेरा विश्वास करो, जगदम्बा सीता की खोज करके मैं रघुनाथ जी को उनका कुशल समाचार दे आऊं, तब तुम मुझे खा जाना।
2: नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे अभी के अभी लील जाऊंगी, मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ूंगी।
3: यदि ऐसा भी है तो फिर देर क्यों करती हो, खा क्यों नहीं लेती मुझे? सुरसा ने अपना विकराल मुख योजन भर लंबा फैला लिया, मैं भी तो योजन लंबा हुआ जाता हूँ। जैसे जैसे तू अपना मुख फैलाती जाएगी, मैं भी अपनी देह विशाल करता जाऊंगा। नाग माता अब अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, इसलिए क्यों न मैं इसकी विशाल मुख में लघु रूप धर कर घुस जाऊं और इस प्रकार नाग माता की इच्छा पूरी करके चटपट अपने रास्ते लगूं।
2: अरे हनुमान ने तो बड़ी चतुराई की, कितना छोटा रूप बनाकर इसने विद्युत गति से मेरे मुख में प्रवेश किया और एक चक्कर लगाकर बाहर भी आ गया।
3: हे माता, मैंने तुम्हारे मन के अनुकूल कार्य किया, आप कृपा करके मुझे जाने की आज्ञा दो।
2: हे अंजनी कुमार, रावण के भय से सदा कांपने वाले देवगण तुम्हारे बुद्धि बल को परीक्षा की कसौटी पर परखना चाहते थे, तुम उस कसौटी पर खरे उतरे। मोह सुरन जेहि लाग पठावा, बुद्ध बल मर्म तोर मैं पावा, राम काज सब करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान।
4: नाग माता के आशीर्वचनों को विनीत भाव से ग्रहण कर हृदय में राम का ध्यान करके पवनसुत बड़े वेग से उड़े। समुद्र के ऊपर से जाते हुए उन्हें छायाग्राही राक्षस मिला। राक्षस ने एक बड़ा आहार उड़ते हुए देखा, उसने लपक कर मारुति की छाया पकड़ ली। पवन कुमार ने अपने मार्ग में आई हुई ये छोटी सी बाधा क्षण मात्र में ही दूर कर दी। पवनसुत समुद्र पार करके सीधे लंका पहुंच गए। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका नगर का अवलोकन किया।
5: कनक कोट विजेता मणिकृत सुन

0: राजधानी की सुरक्षा के निमित्त कड़े पहरे का प्रबंध देखकर कपिंद्र केसरी किशोर छोटे से मच्छर के समान सूक्ष्म आकार धारण करके चतुराई से रावण की नगरी में प्रवेश करने चले और सब पहरेदारों की दृष्टि तो चूक गई, किंतु द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसकी ऐसी माया थी कि कोई चोर उससे छिप नहीं सकता था। राक्षसी ने उन्हें आकाश में ही घेरा और बोली,
1: जान ही नहीं मर मुसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा।
2: अच्छा हुआ अपने पाप का फल भुगतती लंकनी लहू गिराती हुई धरती पर लुढ़कती हुई गिर पड़ी।
1: हे महावीर, ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे यही चिन्ह बतलाया था कि बंदर के मारने से जब तू व्याकुल हो उठे तब समझ लेना कि लंका का नाश निकट आ गया है। अब मैं धन्य हुई, तात प्रविसी नगर की जय सब काजा, जितई राखी कौसलपुर राजा।
2: लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा।
3: राम राम श्री राम श्री राम।
2: अरे
3: श्री राम,
2: ये तो सज्जन है।
3: श्री राम,
2: इससे जान पहचान करनी चाहिए।
3: राम राम।
2: अच्छा, तू विप्र का रूप धारण कर इससे मिलता हूँ। हे भगवत भक्त, अपने द्वार पर खड़े विप्र को देखो।
3: विप्रवर, विप्रवर अपना वृत्तांत मुझसे कहें। आपको देखते ही मेरे मन में प्रबल आनंद तरंगे उठ रही हैं। क्या आप भगवान के सेवकों में से कोई विभूति हैं? क्या आप दीन जनों के प्रेमी स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और मुझ अकिंचन को बड़भागी बनाने के लिए स्वयं इतना कष्ट करके पधारे हैं? बोलिए बोलिए भगवान, बोलिए आप कौन हैं?
2: मेरा नाम हनुमान है। मैं श्री राम जी की आज्ञा से भगवती सीता की खोज में यहाँ आया हूँ।

0: हे पवन सुत, अब दया करके हमारी रहनी भी सुनिए। जैसे दांतों में जीभ बेचारी रहती है, वैसे ही हमारा निभाव होता है। हे तात, कभी न कभी तो रामचंद्र जी मुझ अनाथ की भी सुधि लेंगे, मेरा भी उद्धार होगा।
1: भक्तराज विभीषण, मैं तो वानर कुल में जन्मा, प्रकृति से चंचल और सब प्रकार से दीन हूँ। भोर के समय जो हमारा नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिले। जब मेरी समान अधम पर भी श्री रामचंद्र जी कृपालु हुए, तब आपकी पुकार पर भी दौड़े आएंगे। अब ये बतलाइए भक्तराज, क्या जगदम्बा सीता जी लंका में हैं?
0: हाँ, यही है।
1: मैं पूरी लंका छान आया, किंतु मुझे उनके कहीं दर्शन नहीं हो सके।
0: वे अशोक वन में है।
1: साधु साधु, आपने मेरा बड़ा उपकार किया। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, प्रताप पा जाने पर माता के दर्शन किए बिना मुझे चैन नहीं।
2: नाना कौतुक करते हुए कपींद्र अशोक वन जा पहुंचे। कौशल पूर्वक धीरे धीरे वे उस वृक्ष पर पहुंच गए जिसके नीचे जगदम्बा विराजमान थी। हनुमान जी ने देखा, ऐसी गहन करुणा में भी वे राम चरण लीन थी। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करूं का भाई। तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविध खल सीते समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा।
3: सुन सुमुख सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करहु पनमोरा, एक बार बिलो की ममोरा।
4: रे नीच रावण, क्या तूने कभी जुगनू के प्रकाश से भी कमलिनी को खिलते देखा है? वो सूर्य से ही संभव है। रे दुष्ट दशमुख, तुझे अभी रामचंद्र जी के बाणों का पता नहीं है। सठ सू नहीं हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही।
3: सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं अभी तलवार से तेरा शीश काटकर इस लीला का अंत ही किए देता हूं।
4: ये तो तू मेरे मन की बात कह रहा है, मैं तुरंत इस संकट से उबर जाऊंगी।
3: सूर्यवंशी राम में भला ऐसी कौन सी विशेषता है जो पुलस्त्यवंशी मुझ दशानन रावण में नहीं है?
4: सुनेगा रे नीच तो सुन। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुन सट अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संचातम। पुलस्त्य के समान श्रेष्ठ ऋषिकुल को अपने कुकर्मों से कलंकित करने वाले रे दुरात्मा, विश्वास रख, मेरा वचन निरर्थक न जाएगा। एक दिन मेरे स्वामी तुम्हारे इन सभी शीशों को एक ही बार में उतार डालेंगे।
3: मैं अभी तेरा अंत किए देता हूं।
5: हे नाथ, समस्त जगत के स्वामी, आप जैसे अजय योद्धा हैं, वैसे ही महापंडित भी हैं। काशी मंदोत्री की प्रार्थना स्वीकार करें, पर स्त्री की हत्या करना नीति विरुद्ध है। हे नाथ, ऐसा ना करें।
3: ठीक है, ठीक है। सीता, तुझे एक मास और सोचने का अवसर देता हूं।
6: बहनों, मैंने कल रात एक सपना देखा है।
4: क्या देखा सपने में तूने त्रिजटा?
6: मैंने देखा है कि एक बंदर ने आकर लंका को जला डाला है। राक्षस सब मारे गए हैं और हमारे मालिक रावण गधे पर सवार होकर दक्षिण की दिशा की ओर जा रहे हैं। उनका मस्तक मुंडा हुआ है और बीसों हाथ कटे हुए हैं।
4: अरे सच?
6: अरे झूठ थोड़े ही कह रही हूँ। फिर मैंने देखा कि नगर में रामचंद्र जी के नाम की दुहाई फिर रही है और वो सीता जी को साथ लेकर तथा यहाँ का राज विभीषण को देकर चले गए। फिर मेरी नींद टूट गई। भोर का सपना था बहन। तुम सब जानती हो कि मेरे मन में ना तो किसी प्रकार का छल है, ना कपट और ना स्वामी भक्ति में ही मैं किसी से पीछे हूँ। पर बात तो कही जाएगी। मेरा मन कहता है कि स्वामी ने सीता जी का हरण करके अपना भला नहीं किया।
4: हम तो निर्बुद्धि हैं त्रिजटा, जैसा मालिक ने कहा वैसा कर दिया। पर तुम जो सपने की बात सुना रही हो उससे हम सबके मन में बड़ा भय समा गया है।
5: ठीक बात है
4: त्रिजटा, तुम ही उपाय बताओ बहन, ऐसे में हमें क्या करना उचित होगा।
6: मेरी जान में दंड देने योग्य किसी ना किसी भयंकर खोज का बहाना करके तुम लोग इधर उधर हो जाओ। मैं इस बिचारी देवी स्वरूपा तपस्विनी देवी को थोड़ा बहुत धीरज बंधाऊंगी। हे स्वामिनी, आपके समान तेजस्वी नारी को अपार दुख में इस तरह डूबा हुआ देखकर मैं बड़ा कष्ट पा रही हूँ। मैं राक्षसी भले ही हूँ पर हरि के चरणों में मेरा असीम अनुराग है। मैं अपनी भरसक सेवा से आपको संतुष्ट करूंगी। मैंने एक सपना देखा था स्वामिनी कि रामचंद्र जी लंका को विजय करके आपको ले गए हैं।
4: अरे न जाने कब क्या होगा त्रिजटा, परंतु ये तो निश्चय है एक मास के अंदर ही वो दुष्ट मेरे प्राण हर लेगा। इन आंखों से मैं अपने जीवन धन को फिर कभी न दिख सकूंगी।
6: अपने मन को तनिक भी छोटा ना करो स्वामिनी, मेरा भोर का सपना कभी निरर्थक नहीं जा सकता।
4: हे माता, तुम जब इतनी दया दिखला रही हो तो मेरे लिए एक चिता भी बना दो। मैं ये देह त्याग कर अब अपने पति के हृदय में निवास करना चाहती हूँ।
6: अरे नहीं स्वामिनी, आप अपना मन यूं छोटा ना करो।
4: नहीं माता, तुम चिता बनाकर मेरा परम उपकार करो।
6: हे सुकुमारी, अभी ये संभव नहीं है। हम भला रात के समय आग कहाँ पाएंगी। आप धीरज रखें, मैं कल कोई ना कोई उपाय सोचूंगी। अच्छा तो मैं भी अब घर चली जाती हूँ, आप विश्राम करें स्वामिनी।
4: विश्राम? विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गया है तो फिर विश्राम का न आग मिलेगी और ना मेरी पीड़ा ही मिटेगी। आकाश में इतने अंगारे सुलग रहे हैं, एक मुझ पर भी गिर पड़े तो सारी पीड़ा ही समाप्त हो जाए। पावक मैं ससी सवत न आगी, मानव मोहि जाने हत भागी। सुने ही विनय मम पिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, ते ही अग्नि जन कर ही निदाना।

0: प्राणनाथ की अंगुली में पड़ी रहने वाली ये मुद्रिका यहाँ कैसे आई? या ये कोई और मुद्रिका है? नहीं नहीं, ये तो वही है। इस पर उनका नाम भी अंकित है। तब क्या वो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति पर ब्रह्म त्रैलोकेश्वर तो अजय हैं। माया से भी ऐसी मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती। फिर ये यहाँ कैसे आई? इसमें क्या रहस्य है?
1: भगवान श्री रामचंद्र की माया अपार है देवी, उसे कौन जान सकता है?
0: कौन? अरे तुम कौन हो? मेरे कानों में अमृत खोलने वाले, तुम अपना रहस्य क्यों नहीं बताते?
1: राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहां सही दानी।
0: क्या कहा? नरवान रही संग कहो कैसे?
1: माता, आपकी खोज में श्री राम जी और लक्ष्मण जी पंपासर पहुंचे, वहां मैं और सुग्रीव उन्हें मिले। आपने हमी लोगों को देखकर पुष्पक से वस्त्राभूषण फेंके थे, वहीं सुग्रीव और राम जी में मैंने अग्नि को साक्षी देकर मित्रता करवाई। बाली को मारकर श्री राम जी ने सुग्रीव को राज दे दिया। सुग्रीव ने आपकी खोज में बानर दूत चारों ओर भेजे, जिनमें से मैं यहां तक आने में सफल हुआ।
0: हे तात, विरह जलधि में डूबती हुई दुखिनी के हेतु तुम नौका बनाए हो। हे पुत्र, अब तुम मुझे देव लक्ष्मण और रघुनाथ जी के समाचार सुनाओ। कोमलचित्त वाले रघुकुल तिलक ने मेरे प्रति ऐसे निठुराई क्यों बरती है?
1: हे माता, जगत के नाथ श्री राम जी भला निठुर कैसे हो सकते हैं?
0: हे नाथ, आप तो ऐसे कोमलचित्त के हैं कि अपने दास दासियों तक को भी कभी प्रसन्न नहीं देख सकते। फिर आपने मुझ दुखनी को ही इस प्रकार क्यों बिसा रखा है? हे प्राणनाथ, क्या तुम्हारे श्याम सुकुमार शरीर को मुझे नाकों से फिर कभी देखने का सौभाग्य मिल सकेगा?
1: माता, आप अधीर ना हो, राम जी एक क्षण के लिए भी आपको नहीं बिसार पाए। मैं सच कहता हूं, उनका दुख आपसे दुगना है। लक्ष्मण जी भी यूं तो कुशल पूर्वक है, पर आपके दुख से उन्हें भी अपार दुख है। विश्वास रखें, श्री राम जी दुष्ट दशानन का वध करके शीघ्र ही आपके पास आएंगे।
0: क्या क्या श्री राम जी ने मेरे लिए कुछ भी संदेश नहीं दिया?
1: ऐसा मत कहे माता। कहो राम वियोग तब सीता, सकल भय विपरीता, नव तरु किसले मनहु किसानु, काल निशा सम निस ससि भानु, कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, वारिद तपत तेल जन बरिसा, जेहि तिरहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, कहे उते कछु दुख घटी होई, काही कहूं यह जान न कोई, तत्तु प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। माता, आप धैर्य धारण करें और अपने सेवकों को सदा सुख देने वाली श्री राम का स्मरण करके अपनी ये कातरता छोड़ दें। ये राक्षस पतंगों के समान शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के प्रखर बाणों की अग्नि से भस्म हो जाएंगे। हे माता, मैं रघुकुल नायक की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं आपको इसी क्षण यहां से ले जा सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता, परंतु प्रभु ने मुझे ऐसी आज्ञा प्रदान नहीं की है। हे अंब, विश्वास कीजिए, केवल कुछ ही दिनों की बात है, दीन बंधु दयानिधि सेना समेत

0: यहाँ आकर राक्षसों का संहार करेंगे।
1: हे पुत्र, तुम्हारी उत्साहवर्धक बातें सुनकर भी मेरा मन शंकित है। भले इन पर्वतों जैसे लंबे चौड़े महाबलशाली राक्षसों से क्या प्रभु जीत सकेंगे? अरे, हनुमान जी ने अपना विराट रूप उद्घाटित किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। इनके इस रूप को देखकर मुझे विश्वास होता है कि श्री राम जी अवश्य विजयी होंगे।
0: हे माता, वैसे तो हम बंदरों की बल बुद्धि बड़ी साधारण सी है, पर विश्वास रखिए कि प्रभु की कृपा होने पर एक नन्हा सा सर्प भी अति विशाल काय गरुण को खा सकता है।
1: हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के भंडार हो। रघुनाथ की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हे तात, तुमने यहाँ कर मुझे परम सुख दिया है, तुम्हारा कल्याण हो।
0: माता, मैं धन्य हूँ। कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस वाटिका के फल खाकर अपनी भूख मिटाऊं।
1: जाओ तात, सुख से मीठे फल खाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।

अपने पुत्र अक्षय कुमार तथा अनेक योद्धाओं का संहार करने वाले वानर के ऊपर अब तो रावण को भयंकर क्रोध चढ़ाया। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र महाबलशाली इंद्रजीत मेघनाद को आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से मेघनाद अनेक महाबलशाली योद्धाओं को लेकर हनुमान जी को पकड़ने के लिए चल पड़ा। युद्ध में मेघनाद का रथ टूट गया। इससे मेघनाद और उनके साथियों के क्रोध का वारापार नहीं रहा। सब के सब एक साथ हनुमान जी पर टूट पड़े, किंतु महावीर ने राम कृपा से एक एक के छक्के छुड़ा दिए। हनुमान के प्रहार से इंद्रजीत को भी क्षणभर के लिए मूर्छा सी आने लगी। अंततः मेघनाद ने उनसे माया युद्ध करना आरंभ किया। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपिमन कीन विचार, जोन ब्रह्म सर मान्यो, महिमा मिटई अपार। ब्रह्म बाण कपि कहूं तेहूं मारा, परतिहूं बार कटक संग।

0: सिंघारा तेही देखा कपि मुरछित भयो नाग पास बांधे से ले गए। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। वहां देव दनुज नर किन्नर सब हाथ बांधे खड़े थे। रावण हनुमान जी को देखकर हंसा और बोला,
1: कवन तय कीसा कहके बल घाले से बन खीसा, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अति असंक सट तो ही मारे निश्चर के ही अपराधा, कही सड़त तो ही न प्राण कहीं बाधा।
2: सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल बिरचत माया, जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, और शेष नाग जिसकी आज्ञा से धरती अपने शीश पर धारण किए हुए, जिन्होंने क्षण मात्र में ही शिव जी का धनुष भंग करके तुझे और तेरे समान दुर्मति राजाओं का अभिमान चूर चूर कर दिया था, और जिनकी अर्धांगिनी को तू चुरा कर लाया है, हे अधम, मैं उन्हीं समर्थ राम का सेवक हूं। घूमते घामते कुछ फूक लगी तो फल खाने लगा, अरे अपने स्वभाव वश दो चार पेड़ मुझसे टूट गए, और जो मेरे भोजनानंद में बाधक हुए वे मारे गए, इसमें मेरा क्या दोष है।
1: अरे कुटिल कट, तू कदाचित मेरे प्रभाव को अब भी नहीं समझा। देख, मेरे इंद्रजीत पुत्र ने तुझे क्षण मात्र में ही बांधकर पटक दिया है।
3: हे महाराज रावण, तुम्हारी शक्ति और प्रताप से मैं परिचित हूं, और मुझे अपने बांधे जाने की तनिक भी लज्जा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार बंधकर भी मैं अपने प्रभु का कार्य कर रहा हूं।
1: इस प्रकार बंदी होकर तू अपने स्वामी का क्या भला कर रहा है बंदर।
3: हे दशानन, मैं तुमसे सविनय प्रार्थना करता हूं कि अपना अभिमान छोड़ दो, जिसके कारण महापंडित होकर भी तुम मेरे प्रभु की लीला को समझ नहीं पा रहे हो। हे वीर, तुम अपने परम पवित्र ऋषि कुल की तनिक तो लाज रखो। ये मत भूलो कि जिनकी सती पत्नी का तुम हरण कर लाए हो, उनके भय से देवता और राक्षसी क्या स्वयं काल भी थर थर कांपता है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान।
1: कोई है, इस दुष्ट की गर्दन उतार लो।
4: हे परम प्रतापी, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, आप ऐसा पाप न करें।
1: तुम्हारी यह मंत्रणा मुझे स्वीकार है विभीषण, मैं अब इसका बध नहीं करूंगा, वरन इसकी अंग भंग करके इसके स्वामी के पास भेजे देता हूं। बंदरों की अपनी पूछ पर बड़ी ममता होती है, इसलिए इसकी पूछ में कपड़ा लपेट कर और तेल छिड़क कर आग

0: उलटि पुलटि लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी।
1: हे माता, आपके चरणों के प्रताप से मैं लंकेश को उचित शिक्षा देकर आ रहा हूं। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने मुझे चिन्ह स्वरूप अपनी मुद्रिका प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे अपना कोई चिन्ह देने की कृपा कीजिए।
2: हे पुत्र, श्री मेरा चूड़ा मणि तुम लेते जाओ। इसे देखकर मेरे नाथ संतुष्ट हो जाएंगे और कहे हो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। तीन दयाल बिरदो सम भारी, हर हुनाथ मम संकट भारी। कहना हे नाथ, यदि आप एक मास के भीतर मुझे लेने के लिए न आएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी।
1: हे माता, आप अपने मन को इतना छोटा न कीजिए, धैर्य धरिए।
2: हे पुत्र हनुमान, मैं कैसे धैर्य धारण करूं? प्रभु कृपा से तुम आज आ गए तो मुझे जीने का कुछ सहारा मिल गया है। तुम्हें देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है, पर अब तुम भी जा रहे हो, मेरे लिए वही दुखदायी दिन और वही प्राण लेवा रात फिर से आ गई।
0: जनक सुते ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई, कपि गमनु राम पहिंकी। हनुमान जी ने लौटकर श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव जामवंत आदि से सब कथा कही। उसे सुनकर परस्पर प्रेमवश मिलते हुए स्वामी और सेवक दोनों ही भाव विभोर हो गए। और कुछ समय बीतते न बीतते वानर सेना लंका की ओर प्रयाण करने लगी।

कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।